0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लगे अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछौ छोरी?
2: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
1: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
2: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
1: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
2: न्यू असम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
3: न्यू असम जाल्पा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर, न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गर गहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25।
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकारी गरौं।
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
6: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
7: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98-584-89-213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झनै फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बरई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोलै फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
6: उपभोक्ता वर्गमा टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोध आफूलाई आवश्यक औषधि खाद्यान्न पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति मूल्य सूची लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा दिल बिजक लिने बानी बसालौं सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं अखाद्य रंग वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम ठेगाना र वस्तुको ब्याज नम्बर तौल अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं
7: साथै उत्पादन मिति उपभोग्य नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौं
6: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने खरिद गर्दा मूल्यमा मोल मोलाई गर्न पाउने र आफूले

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान 9 बजे के थारू भाषा के खोज खबर में यहां हुक रहिन स्वागत बा। खोज खबर से छपिलाल चौधरी के राम राम। अब अपनी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो और नेपाली पात्रो में फेसबुक तिबाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से देशभर बहिया पीड़ित के लाग राहत संकलन कई जैती टीकापुर के महिला दर खैना खर्च बहिया पीड़ित देना डीएनए नमूना संकलन पार 220 सब के व्यवस्थापन सुदूरपश्चिम में गौरा पर्व आस्ते शुरू घर घर में बिरूडा धैक मना जैती सुदूरपश्चिम के चार अस्पताल शिक्षण अस्पताल के रूप में प्रयोग कई जिना 20 वर्ष के समझौता में हस्ताक्षर ओ लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना आप खोज आज पूरा खबर रसुवा बहियापाछ प्रभावित अवस्था नाजुक हुलपाछ अत्रा बेला देशभर राहत संकलन के काम हुईटीबा टीकापुर में फिर नगर तथा खाद्यान्न संकलन के काम हुईटी रहल बा टीकापुर साना शहरी खाने पानी तथा सरसफाई संस्था बहिया पीड़ित के लाख 1,51,100 रूपया प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करल बा ओस्तहें निवृत्त शिक्षक समाज जिला कार्य समिति कैलाली समेत 15,000 रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करल अध्यक्ष सुमन कुमार नेउपानी जानकारी देहलवाट बहिया से देश दुखल बेला महिला हुकर लगती रहल तीज के दर कार्यक्रम समेत नई मनैना निर्णय करल बाट तीज के दर कार्यक्रम 15 दिन आग करना करल महिला हुकर ई बरस तीज में कई दिना खर्च राहत में खर्च करना निर्णय हुई महिला जागरण बहुद्देश्य सहकारी संस्था के अध्यक्ष राधा रावल बतैलबाट देश पीड़ा में रहल बेला मलम लगाई परत कैकर टोल विकास संस्था हुकर समेत राहत संकलन में लागल बाट टीकापुर ओडा नंबर 1 स्थित साझेदारी ओडा संजाल में 22 ठो टोल विकास संस्थाबाट ई संस्था से नगद राहत संकलन शुरू करल सिद्धि विनायक टोल विकास संस्था तथा साझेदारी ओडा संजाल के अध्यक्ष सृजना शर्मा पंडित बतैलबाट बाढ़ी पीड़ित राहत के लाख नगद के नाही खाद्यान्न लुगा कपड़ा चप्पल लगायत के सामग्री समेत आवश्यक बा आम्ही महिला और बाल बालिका के लाख थप सामग्री चाहल बा महिलान के लाख भित्री लुगा सैनेटरी पैड बच्चा के लाख पैड दूध तैयारी खाना फिर समेत आवश्यक बा ढेर जाहिन ठाउँ फेरना लुगा के अभाव हुई सकत कहकर नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टीकापुर नगद बाहेक के आवश्यक सामग्री समेत संकलन शुरू करल बा रेड क्रस से सामूहिक टोली बनाकर आईतवार सोमवार और मंगलवार कहकर 3 दिन सामग्री संकलन करल नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टीकापुर के संयोजक धर्मराज शर्मा बटैलबाट बजार में राहत संकलन समिति के संयोजक में जानकी शाहरहलबाट बहिया पीड़ित के जीवन सहज बनाई संघ संस्था तथा व्यक्तिगत हिसाब से समेत नगर तथा सामग्री राहत पठैना काम हुईती रहल बा उद्योग वाणिज्य संघ टीकापुर से समेत 1,11,111 रूपया प्रधानमंत्री दैविक प्रकोप उद्धार कोष में जमा करना निर्णय करल बा अस्त कैकर नागरिक समेत स्वस्फूर्त रूप में रकम जमा करती रहल बाट रसुआ के भोटेकोशी लदिया में अलग भीषण बहिया पास त्रिशूली और नारायणी लदिया के तटीय क्षेत्र में फैला पड़ल सब मध्य हालसम 280 सब के फोरेंसिक परीक्षण तथा डीएनए नमूना संकलन कैकर चितवन के देवघाट स्थित व्यवस्थापन स्थल में सुरक्षित रूप में व्यवस्थापन कैगिल बा भरतपुर अस्पताल के प्रवक्ता डाक्टर रामप्रसाद सापकोटा के अनुसार यह भदौ 10 गते रात से सुरक्षाकर्मी त्रिशूली लद्या से संकलन करल सब अस्पताल सम लान के संरक्षण करल रह यह भदौ 11 गते बिहान से फोरेंसिक विज्ञ के नेतृत्व में चिकित्सक टोली परिचालन कैकर सब पहचान के लाग आवश्यक फोरेंसिक परीक्षण, डीएनए लगायत के जैविक नमूना संकलन तथा अभिलेखीकरण के काम शुरू कैगिल बा। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर पौडेल के अनुसार हालसम त्रिशुली ओ नारायणी लदे से 221 सब संकलन कैगिल बा। ऊ मध्य 12 सब के शनाखत होकर आफन्त बुस याकल बाट संकलित सब मध्य 66 महिला, 116 पुरूष, 7 बालक, 6 महिला हो। 126 जाहिन के पहचान खुल नै स्याकल अवस्था रहल सब धैगिल बा। उहाँ भविष्यमा पहिचान कर सिक्जिना कैक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार देवघाट स्थित व्यवस्थापन स्थलमा सुरक्षित रूपमा ऊ सबके व्यवस्थापन कैगिलक बटैलबाट। भदौ 23 गते 96 सब, भदौ 24 गते 103 सब हो। भदौ 15 गते 81 सब व्यवस्थापन कैगिलक हो। प्रहरी उपरीक्षक पौडेल लदिया किनारमा सब खोज्ना काम आमी दैनिक रूपमा जारी रहल बटैलबाट। लदियामा फेला परल सब भरतपुर अस्पताल लानके फोरेन्सिक परीक्षण ओ डीएनए नमूना संकलन करल पाछ देवघाट स्थित व्यवस्थापन स्थलमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गर्ना काम निरन्तर हुइति रहल उहाँ जानकारी देहलबाट। सुदूरपश्चिमकै जीवन्त मौलिक पर्व गौरा आज से विधिवत रूपमा शुरूआत हुइलबा। भाद्र शुक्ल पक्ष पञ्चमी से शुरू हुइना यी पर्व आज पहिला दिन घर घरमा बिरूडा धैक मना जैतिबा। आजुक दिन बिरूडा पञ्चमी कैके फेकै जात। आज व्रतालु महिला उक्र घरमा बिरूडा अर्थात 5 प्रकारके अन्न तथा गेडागुडी भिजाक गौराके शुरूआत गर्थ। तामाके भाँडा गाईके गोबर से लिपके डुबो अक्षता सिंगार पटार कैक वाकर भितर पञ्च अन्न मास कलौ गहत गहुँ ओ गुरुस भिजाक बिरूडा बनैना चलन बा। बिरूडा गौरी के प्रसाद के रूपमा ले जात। गौरा देवी के पूजा आजामा फे बिरूडा के प्रयोग कै जात। पुत्रदा एकादशी के व्रत बैठ साकल पाछ भाद्र महिना के बिरूडा पञ्चमी से गौरा पर्व विधिवत रूपमा शुरू हुइना याकर जानकार हुँक्र बतैठ। फागमा सबको नारी गौरा पर्व के व्रत लेह लागल ओ अपनो फे ई व्रत लेना इच्छा करलक मार बिरूडा के लग आवश्यक दाल तथा और सामग्री खोजी देह महादेव नगर में जाक मांग लान आग्रह करल बातचीत से कथा के आरंभ हुईना संस्कृति के जानकार मुरलीधर अवस्थी बतैठ। खोज खबरमा सुदूरपश्चिमके 4 अस्पताल शिक्षण अस्पतालके रूपमा प्रयोग गरेर 20 वर्षके सम्झौता लगायतके खबर पलिबा। सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
2: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
3: अवस्थामा पनि घरमा सकि नसकि सबै काम गर्नुपर्छ। कस्तो गाह्रो हुन्छ पनि काम गर्न विदेश जानु भएको छ। के गर्ने के नगर्ने केही थाहा छैन।
4: त्यस्तो राम्रो पढ्ने मेरो साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्यलमा पारी। 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
0: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ओ शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीच प्रदेश के 4 प्रादेशिक अस्पताल विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूपमा प्रयोग गर्न समझदारी हुइल बा। याकरलाग प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय बीच 20 वर्ष के समझौता हुईलक हो। सामाजिक विकास मंत्री संतोष शर्मा थापा की अध्यक्षता में हुईलक कार्यक्रम में सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय वो शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीच शिक्षण अस्पताल के रूप में अस्पताल प्रयोग करना संबंध में समझदारी पत्र एमओयू में हस्ताक्षर कैगिल हो। समझदारी अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, टीकापुर अस्पताल और लम्कीचोहा प्रादेशिक अस्पताल विश्वविद्यालय के शिक्षण अस्पताल के रूप में प्रयोग कैजिया। समझौता से स्वास्थ्य विज्ञान के शैक्षिक कार्यक्रम संचालन, क्लिनिकल अध्ययन तथा अध्यापन, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण के लाग प्रदेश में उपलब्ध जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत साधन के अधिकतम और प्रभावकारी उपयोग करना लक्ष्य धरल बा। मंत्रालय के ओर से निमित्त प्रदेश सचिव डॉक्टर नीरज अर्याल और विश्वविद्यालय के तरफ से रजिस्ट्रार डॉक्टर भीम बहादुर चंद से समझदारी पत्र में हस्ताक्षर करल बाट। नेपाल स्थित चिनिया राजदूत से कैलाली और कंचनपुर के दुई संस्था सहयोग करल बा। दूतावास के उज्यालो भविष्य कार्यक्रम अंतर्गत भजनी स्थित महुन्याल माविह शैक्षिक सामग्री सहयोग करल बा। अस्तहे आरामदायी प्रसूति कार्यक्रम अंतर्गत कंचनपुर के लालझाड़ी गांवपालिका स्थित लालझाड़ी आधारभूत अस्पताल स्वास्थ्य सामग्री सहयोग करल बा। काल महुन्याल माबी में आयोजित कार्यक्रम में चिनिया दूतावास के सहयोग में महुन्याल माध्यमिक विद्यालय डेस्क बेन्च, स्मार्ट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्कूल बैग लगायत के आवश्यक शैक्षिक सामग्री हस्तांतरण कैगिल हो। सहयोग से विद्यालय के भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण सुधार करना के साथ विद्यार्थी के नियमित विद्यालय उपस्थिति प्रोत्साहन और अध्ययन प्रति रूचि तथा उत्प्रेरणा बढ़ाई सहयोग पुग्ना अपेक्षा कैगिलक महुन्याल मावि व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद जैसी बतैल बाट। भजनी नगरपालिका के प्रमुख केवल चौधरी भजनी डुबान क्षेत्र रहलक मार शैक्षिक विकास में असर पर्ती रहल हो असीम सामग्री सहयोग से सहज हुईना बतैल बाट। जमरा शाखा सिंचाई प्रणाली जल उपभोक्ता तथा टीकापुर के नया नेतृत्व चयन के लाग यह भदौ 18 गते चुनाव हुई नाहिल बा। परौसे शुरू हुईलक छठौं चुनावी साधारण सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव के पद में चुनाव हुई लागल हो। यी बाहेक कोषाध्यक्ष एकजान, बरघर सदस्य सातजान, महिला सदस्य ओ आठजान, पुरूष सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो सकल बाट। कोषाध्यक्ष में सीता चौधरी, बरघर सदस्य में रामकृष्ण देवी चौधरी, महिला सदस्य में धना देवी बुढ़ा, शारदा सुवेदी, शशिकला चौधरी, बीना देवी कठायत, विनीता कुमारी चौधरी, पार्वती देवी चौधरी और सुंदरी देवी चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुई बाट। अस्तहे पुरूष सदस्य में धनबहादुर साउद, मोहनलाल महतो, भीम बहादुर साउद, प्रदीप कुमार शाह, धीरेन्द्र बहादुर विष्ट, फत्तेजंग चौधरी, जोखनलाल डंगौरा थारू, पहल सिंह लोहार फे निर्विरोध निर्वाचित हुईलक निर्वाचन समिति जनाइल बा। अध्यक्ष में मान बहादुर चौधरी और अमर बहादुर चौधरी, उपाध्यक्ष में वीर बहादुर घरतीमगर और तुल बहादुर शाह, सचिव में भूपेन्द्र पुनमगर ओ हीरा देवी चौधरी, सहसचिव में एम नारायण शर्मा ओ तेज बहादुर चौधरी के उम्मीदवारी पड़ल बा। अन्य में निर्विरोध निर्वाचित होश्याकल ओ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव के पद में केल सहमति नहीं हुईलक मार 18 गते बिहान 10 बजे से मतदान हुईना निर्वाचन समिति के सदस्य दामोदर खड़का जानकारी देहल बाट। खोज खबर में आमी खबर पलिबा सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
7: मैं नहीं जाई, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
6: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तू। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकर बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
7: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
8: याद गर्बी मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा।
0: मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा।
8: सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417।
9: झरी र बाढ़ीको मौसममा ओभानो ठाउँ खोज्दै सर्पहरू जमिन बाहिर निस्किन थाल्छन्। यस्तो बेला सर्पले टोक्न सक्ने भएकाले यी कुराहरूमा चनाखो हुने गरौं। सुत्ने बेला झुल लगाउने, घर वरपर सर्प लुक्न सक्ने ठाउँको पहिचान गर्ने र ख्याल राख्ने, राति हिँड्दा लट्ठी बोकेर र टर्च लाइट बालेर हिँड्ने, सकेसम्म झाडीतिर नजाने र बाहिर हिँड्दा हात खुट्टा पूरै छोपिने गरी लुगा लगाउने, घुँडासम्म आउने कम्बोट लगाएर जाने, ढुङ्गाको पर्खाल, लडेका काठ, दाउराको चाङ उठाउँदा वा चलाउँदा विशेष ध्यान दिने, मुसा, छेपारो, भ्यागुता धेरै देखिने ठाउँमा सर्प आउने सम्भावना बढ़ी हुन्छ। सर्पले टोकिहाले धामी झाँक्री कहाँ नगई जति सक्दो चाँडो बिरामीलाई अस्पताल वा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुर्याउने। बेलैमा होसियार भए आफू पनि बचिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ।
0: खोज खबरमा बचल खबर। हाल देशभर मनसुनी वायु के प्रभाव रहल बा। हाल मनसून के न्यून चापीय रेखा सदर स्थान से कुछ उत्तर हुँ रहल बा। अब हाल देशभर साधारणतया बदली लागल बा। कोशी बागमती प्रदेश के कुछ ठाउँमा गण्डकी लुम्बिनी ओ कर्णाली प्रदेश के थोर्चे ठाउँमा साथ मधेस ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के एक दुई ठाउँमा मध्यमसम्म के वर्षा हुइटी रहल बा। आज दुपहर देशभर साधारणतया बादल बदली लगुया बा। देश के हिमाली ओ पहाड़ी भूभाग के ढेर ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यमसम्म के वर्षा हिमपात के सम्भावना बा। बागमती गण्डकी लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के कुछ ठाउँमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षा के सम्भावना बा। देश के पहाड़ी भूभाग तथा लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा के सम्भावना बा। 19औं राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस के अवसरमा भानु सामुदायिक पुस्तकालय तथा स्रोत केन्द्र शक्ति प्रभात फेरी करल बा। बाल युवा ओ वृद्ध पुस्तकालय सकुन के गन्तव्य कनक कना नारा सहित मना गैलक पुस्तकालय दिवसमा टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 के सत्तीमा प्रभात फेरी कार्यक्रम कैगिलक हो। प्रभात फेरी कार्यक्रममा धेरनक 4 थो विद्यालय के 30-30 जना विद्यार्थी र शिक्षक हुकन के सहभागिता रहल रह। कार्यक्रममा कर्णाली मावि सत्ती, जेसिस पब्लिक टिकापुर, जीवन ज्योति एकेडेमी ओ नोबेल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी र सहभागी हुइल रहल। प्रभात फेरी पाछ रसुवामा अहिलक भीषण बहिया पहिरोमा पर्कर ज्यान जवैय हुकनके लागि एक मिनट मौन धारण कैक कार्यक्रम हुइल रह। टिकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 के वडाध्यक्ष दीर्घ बहादुर ठकुल्ला प्रमुख अतिथि रहल रह। कार्यक्रममा विद्यालय के ओर से नोबेल पब्लिक स्कूल के प्रिन्सिपल नर बहादुर बुढा, उज्यालो बहुद्देश्य सहकारी संस्था के अध्यक्ष प्राङ्कुश चौधरी आपन भनाई धरती पुस्तकालय दिवस के शुभकामना दिहल रह। पुस्तकालय के अध्यक्ष मणिराम ढुंगाना के अध्यक्षता में हुईल कार्यक्रम के संचालन पुस्तकालय के सचिव अर्जुन चौधरी करल रह। कलसे स्वागत पुस्तकालय के उपाध्यक्ष धनसरी कोईराला करल रह। यह समाचार संग बिहानिक 9 बजे थालू भाषा खोज खबर ओराइल। अंतिम में जैती जैती खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक एक फेरा फेर से। देशभर बहिया पीड़ित के लाग राहत संकलन कई जैती। टीकापुर के महिला दर खैना खर्च बहिया पीड़ित देना, डीएनए नमूना संकलन पास 280 सबके व्यवस्थापन। सुदूरपश्चिममा गौरा पर्व आज से शुरू, घर घर में बिरूडा धैक मना जैती। सुदूरपश्चिम के चार अस्पताल शिक्षण अस्पताल के रूप में पर्यो कैजिना 20 वर्ष के समझौता में हस्ताक्षर हो लुम्बिनी और सुदूरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग के एक दुई ठाव में भारी वर्षा के संभावना लिट अब खोज खबर अटरह प्राविधिक संग्रह धन्यवाद डेटी अब खोज खबर से मई छपिलाल चौधरी विदा हुई टू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम
10: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडीन बागवान
11: यही भड़ौ 20 गते शनिवार का दिन
12: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
10: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
12: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
11: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 20 गते शनिबार
13: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाड़ा का बिरामी फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुर में अब देखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ संपर्क फोन नंबर 9868800008 र 9825637772
14: जापानी इन्सेफलाइटिस रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अत्यन्त जरुरी सूचना
15: जापानिज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने भाइरल रोग हो यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ
16: यो भाइरसबाट संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुँगुर बंगुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने सो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भने सर्दैन यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ
15: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू
16: बेसरी टाउको दुख्ने
15: उच्च ज्वरो आउने बेहोस हुने
16: घाँटी अररो कडा हुने
15: कम्पन हुने
16: पक्षघात हुने
15: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ
16: जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बच्ने उपायहरू
15: लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो
16: हाँस कुखुरा सुँगुर बुङ्गुर जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढंगले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले पाल्ने गरौं
15: घर बाहिर निस्कदा खेतबारीमा काम गर्दा पूरा बाहुला भएको कपडा लगाऊ
16: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पुरी दिने गरौं
15: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौं
16: सधैं झुल टाँगेर सुत्ने गरौं
15: याद गर्नुहोस् यो रोगबाट बस्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ
17: स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली
18: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
19: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
19: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
20: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
21: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरलो से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आप बा का सर सफाई कही दी है।
0: फोन नंबर कटरा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 300।
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो? महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा।
1: अपनौ कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मन सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हन समझावे। संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 ओ 98 6 56 92 026।
2: ए भन्देखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
3: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
4: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
5: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिक का सामानहरू पनि पाइन्छ।
2: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ।
6: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
7: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस।
8: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
6: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98 4 84 48 673 र 98 14 68 02 04।

0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन युभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी
4: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइन आउने न पट्टा नि पैना त
5: अधि गहना बनाइन त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
4: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएको आन्छ कि कत्रा सुघर बनाएको न ल बाटी
5: ए ले ले ठिकै बा चल हाली भाटवट खाइ आऊ जाइका हौ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846239261।
6: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल ताया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223733।

0: फुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस बाटी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुही।
1: लिया लिया मैं अपनी ही जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
4: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: परिवारमा सबै बिरामी
1: आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि त अपनाउनु पर्यो तर यति हुँदाहुँदै पनि सबै एकला सुका हुन्छ र
0: कहिले कोही बिरामी कहिले कोही बिरामी म त दिक्क भइसकेँ हो
1: कसो कालले छिटो नलाग्यो
2: होइन चाइनेजो माइलो के बर्बर बर्बर कराइरहेछ के भएको छ तलाई
0: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसकेँ छोरो उस्तै बिरामी छ स्कुल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भने म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
2: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमा मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
3: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
4: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली
5: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
6: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
5: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
6: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
7: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली हुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
8: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दी घुवा जागिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटू कहाँ।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800046774417।

0: ओहो कहो धो काकू सपुर सुपुर के दूर जाय हंस त।
1: अरे का कभी पटोया खोजे जाय हंस करती।
0: क्या कर लग हो काकू?
1: हाँ ये छावक लगता जाय थी पटोया खोजे।
0: अन्य भैया तो 19 बरस पुगलिस त।
1: का कर भी त घर काम फे तो चले पड़ल।
0: वो लौंडी जे कई बरस के बाद काकू
1: समझा ने वस्तम बताया करते है 18-19 वर्ष तक लियो बर्बाद हो गई।
0: अब कानून तो 20 वर्ष पूरा नहीं हुई सम लौंडा लौंडिन के भाजन नहीं हुई देह जे
1: कानून सानून तुरे जानो हमन तो पटैया चाहल बा।
0: अरे काका वसी कह के कहाँ हुई उमेर नहीं पुके भाज कर बेर लौदा लौदेन के दुनून के जीवन बर्बाद हुई। 20 वर्ष तरक लौदा लौदेन के भाज कर लैल से भगल भगैल से कानून बमोजिम दुनु पक्ष है सजाए हुई वो भाज तो वस्ते है बदल हो जाए।
1: ओहो ऐसी हो कल से त 1 वर्ष और असर लागे पड़ल उमेरे पुगल पटोया खोजे पड़ल।
0: हजूर 20 वर्ष तरह किशोर किशोरिन के भस करना ओ करना कानूनी अपराध हो। जानकी गांव पालिका 4 नंबर ओड़ा कार्यालय से जनहित में जारी संदेश।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा अपनकन स्वागत बा खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम अपनहुक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संग अनलाइन www.tikapurfm.org मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो म फेस सुन्ती रहल बाटी खोज खबर शुरू गरी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कार्यक्रम के वार्षिक समीक्षा क्षेत्रीय अस्पताल पुग्क सेवा प्रवाह चुस्त बनाई मुख्यमन्त्री भट्टदेला निर्देशन खानेपानी संस्थान धनगरी के बक्यौदा 2,51,00,000 ओ रसुवा बारीमा मंगलबार दिन के 1,058 सब भेटागिल 952 के लाश के मुचुलका जानकी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2082-83 सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रम के समीक्षा गोष्ठी हुल्वा समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै जानकी गाउँपालिका के अध्यक्ष गणेश चौधरी स्वास्थ्य सेवा नैसर्गिक अधिकार हुलक बटुइराबाट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवामा न सुधार हुलक बटुइटी पाछक समय पालिकामा नैसना रोग मन वृद्धि हुइति रलक वर्षे नैसना रोग न विपर्से द्वारा आवश्यक रहलक उहाँ बटुइलबाट उहाँ पालिकामा न सकुन से बढ़ी शिक्षा व स्वास्थ्यमा खर्च करलक बटुइटी समस्या बजेट के समस्या से फिर योजना व काम करना शैली महत्वपूर्ण रहलक बटुइलबाट उपाध्यक्ष लालमती कठरिया पाछक समय बाल बालिका हुक्र जंगफूट बढ़ी प्रयोग करती रहलक वर्षे न्यूनीकरण के लागि सक्कुजन लागपना बटुइलबाट वहां पोषण संबंधी के कार्यक्रम संचालन हुई बेरफे कुपोषण व शीघ्र कुपोषण के समस्या देखी लग जानकारी करेलबाट कार्यक्रम में पालिका से आर्थिक वर्ष 2082-83 में संपन्न हुईलक कार्यक्रम के स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपलब्धि समस्या चुनौती लगायत के बारे में स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जीत बहादुर चौधरी प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा वहां प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करती पालिका में खोप कार्यक्रम में वृद्धि हुईलक नैसना रोग संख्या में वृद्धि हुईलक जानकारी देती पालिका से मानसिक संबंधी समस्या हुईलक फिर सेवा दिलक जानकारी करेलाट वहां पालिका के स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के दरबंदी नि हुईलक संघ ओ प्रदेश से आपूर्ति हुईना दवाई जन्य सामग्री नियमित समय में आपूर्ति नि हुईलक कोल्ड चेन व औषधि जन्य सामग्री के भंडारण के समस्या रहलक बटुइलबाट पालिका सामुदायिक विद्यालय में विद्यालय नर्सिंग कार्यक्रम फिर संचालन कलबा कार्यक्रम में विद्यालय नर्सिंग नर्स मार्फत विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी हुईलक क्रियाकलाप संबंधी के जानकारी शारदा चौधरी व मीरा चौधरी वस्तक नागरिक आरोग्य केन्द्र मार्फत संचालन करगिला कार्यक्रम बारे दिव्या चौधरी जानकारी करैलबाट कार्यक्रम में एक नेपाल के पोषण परियोजना के संयोजक रमन राज जोशी फे संस्था से पोषण संबंधी के कार्यक्रम अंतर्गत हुईलक गतिविधि संबंधी जानकारी करैती स्वास्थ्य महिला स्वयंसेविका के क्षमता विकास अगुवा कृषक हन तालीम किसान कार्ड मार्फत 1,000 दिन के आमा पोषण बगैचा निर्माण लगायत के कार्यक्रम मन रकम सहयोग ओ पोषण लेखाजोखा मन समेत सहयोग करलक बटविटी मेडिकल ओ नन मेडिकल सामग्री वितरण मन सहयोग कृषि बजारीकरणमा सहयोग कृषि एम्बुलेन्स खरीदमा समेत पालिका सहयोग अलग जानकारी देलबाट कार्यक्रममा पालिका भित्र के आधारभूत स्वास्थ्य संस्था के प्रमुख जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रह कार्यक्रम संचालन स्वास्थ्य शाखा उपसंयोजक शोभा चौधरी करलरह सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट सेती प्रादेशिक अस्पताल के अवलोकन कर्लबाट मंगलवार अस्पताल के निरीक्षण करती वहां सेवा प्रवाह हन थप प्रभावकारी सहज और चुस्त बनाई कर्मचारी निर्देशन देलबाट आपन प्रतिबद्धता अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल के दोसरो छो अनुगमन करती मुख्यमंत्री भट्ट अस्पताल में ऐना कोनो फे नागरिक सेवा लिए से वंचित नई हुईना हुई नई हुईना बटुइलबाट वहां अस्पताल में उपलब्ध स्रोत साधन और जनशक्ति के अधिकतम प्रयोग करती सेवा प्रवाह में सुधार कर निर्देशन देलबाट थप कर अपना सेवा सुविधा के विषय में प्रदेश सरकार आवश्यक पहल करना वहां के कहाइबा मुख्यमंत्री भट्ट अस्पताल में ऐना विरम्य नो सेवाग्राही प्रति कर्दिना व्यवहार में सुधार कर अपना में जोर देलबाट सेवाली ऐना नागरिक अनावश्यक ढिलासुस्ती व झंझट व्यवहार अपना अवस्था के अंत्य हुईपना वहां बटुइलबाट अस्पताल के सेवा प्रवाह के संग भौतिक तथा संरचनागत सुधार मन समेत प्रदेश सरकार ध्यान देलक मुख्यमन्त्री बटुलबाट। वहाँ अस्पतालके समग्र व्यवस्थापन सेवा पर वहाँ थप प्रभावकारी बनाए आवश्यक सुधार के काम हुन प्राथमिकता के संग आगह बढ़ाई निर्देशन देलबाट। हालसम्म रसुवा बाढ़ी के कारण मृत्यु हुइलक 1058 शव फेला परलवा। नेपाल प्रहरी के अनुसार मंगलबार के दिन के 2 बजेसम्म 1058 जना के शव फेला पारिगिलक हो। जिहमना 30 लौरा लड़का 35 बालिका 232 महिला 371 पुरूष 390 आंशिक अंग हुईलक सब फेला पारगिलक प्रहरी से जनागिल बा। जौन मध्य 992 सबके लाश मुचुलका होसेकलक प्रहरी जनैलबा। ओस्तकन 58 जना के सब आफन्त हस्तान्तरण करगिलको पहिचान निखुल्लक 684 सब जमीन के तर व्यवस्थापन कलक प्रहरी उल्लेख करलबा। ओस्तक प्रहरी सार्वजनिक कलक तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 4606 जन सम्पर्क विहीन रहलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाँच छ ऐनेनी बाटी सुन्तिरही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ।
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जाना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। महाकाली लद्देमा पानीके बहाव बर्कन 1,08,992 क्यूसेक पुगल पाछ। नेपाल भारत सीमा जोड़ना बनबासा पुल मन चारपाङ्रे सवारी साधनके आवत जावत बन्द करगिलबा। पानीके बहाव बढ़ल पाछ। सुरक्षाके दृष्टिसे मंगलबार बिहान 6 बजे थेसे वनबासा पुल मन चारपाङ्रे सवारी साधनके आवत जावत रोकिलक जनागिलबा। महाकाली लद्देमा पानीके सतह तथा बहाव बढ़लके संग वनबासा पुल मन आवत जावत प्रभावित हुइल पाछ। नेपाल भारत सीमा हुइती यात्रा गर्न यात्रु तथा सवारी चालक सतर्क रह आग्रह करगिलबा। सम्बन्धित सक्कुनहन पुल मन चारपाङ्रे सवारी साधनके आवत जावत बन्द करगिलक जानकारी गराइती आवश्यक सतर्कता अप्नाई अनुरोध करगिलबा। नेपाल खानेपानी संस्थान धनगढ़ी शाखाकै आर्थिक वर्ष 2082-83 के असार मसान्तसम्म उठाई बाँकी बकेउडा 2,51,00,000 पुगलबा। खानेपानी संस्थान धनगढ़ीकै प्रमुख रामचन्द्र लामिछाने निजी हुकन्से रू 2,16,10,947 ओ सरकारी से रू 35,45,954 असुल कर बाँकी रहलक। जानकारी देलबाट संस्थान धनगढ़ी उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 व 9 मन दैनिक 1,30,00,000 लिटर पानी वितरण करना करलबा। कुल 11,339 जना सेवा गराई ऊ पानी उपभोग करना करलबाट। संस्थान खानेपानी उपभोग करल बाफत मासिक न्यूनतम 110 असूल करतीलबा। वस्तकन नेपाल खानेपानी संस्थान धरगरी गैलक आर्थिक वर्षमा विभिन्न राजस्व शीर्षक से जम्मा रू 6,32,28,734.91 राजस्व संकलन करलक। कार्यालय प्रमुख लामी छाने जानकारी देलबाट कार्यालय यी से आग आर्थिक वर्ष 81-82 मन रू 5,52,38,57.34 राजस्व संकलन करल रह। जौन आघक आर्थिक वर्ष के तुलना मन गैलक आवम 10.46% ले राजस्व वृद्धि होइलक पागिलबा। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम विश्राम पाछै नि बाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आइ हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो? पाछै से शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत का कहना हो का
4: मिस्तरान वर्जन हो कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट एल्युमिनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में एल्युमिनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
7: मिलन एल्युमिनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-5143-26।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेज बाग कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
9: यही भड़ो 20 गते शनिबार का दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला।
9: डाक्टर आउने दिन यही भडो 20 गते शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाड़ा का बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुर में अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। संपर्क फोन नंबर 9868-80-0008 र 9825-6377-72।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। परराष्ट्र मन्त्रालय भोटेकोशी बाढ़ीमा हेरैतिरलक विदेशी नागरिकके आफन्त हुकन डीएनए प्रोफाइल पठाई आग्रह कलबा। बाढ़ी बारे जानकारी दिए मन्त्रालय आज गर्लक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बाढ़ीमा संकलन कर्गिलक सब पहिचान केलाक हेरैतिरलक विदेशी नागरिकके लगके आफन्त डीएनए प्रोफाइल पठाई आग्रह कलक हो। विदेशी नागरिकके आफन्तको आफ्नो देशमा डीएनए प्रोफाइल तयार गराक नेपाल प्रहरी आधिकारिक ईमेल ठेगानामा पठाइसेकना परराष्ट्र मन्त्रालयके प्रवक्ता सहसचिव लोकबहादुर पौडेल छेत्री बटुलाबाट मन्त्रालय डीएनए प्रोफाइल पठाई कूटनीतिक माध्यमसे सम्बन्धित देशहुकनमा औपचारिक अनुरोध समेत कर्सेकलक प्रवक्ता पौडेल छेत्री बटुलाबाट बाढ़ी प्रभावित प्रभावित क्षेत्र से हालसम्म 1010 ठो सब संकलन करगिल बाकलसे अधिकांश सबके शनाखत हुई साकलनी हो। पुस्तक बाढ़ी के कारण विभिन्न 39 देश के 590 जना विदेशी नागरिक समेत 4000 जना से बढ़ी आमीन हेरे तिरलक परराष्ट्र मंत्रालय से जना गिलबा। बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र से संकलन कर गिलक पहचान हुई बाकी सब डीएनए नमूना लेके जमीन तर व्यवस्थापन कर गिलक को लगभग के आफन ढंकन से डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई पाच पहचान करके आफन ठह सब हस्तांतरण करना परराष्ट्र मंत्रालय के प्रवक्ता सहसचिव लोक बहादुर पौडेल छेत्री जानकारी करे। बाढ़ी मन हेरेती रलक मनिनके खोजी तथा उद्धार के लाग पहिला नेपाली सेना नेपाल प्रहरी ओ सशस्त्र प्रहरी बल के 21000 जनसेफे ढ्यूर नेपाली सहित विभिन्न देश से अलग विदेशी प्राविधिक हुक्रफे सक्रिय रहलक पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता पौडेल छेत्री जानकारी दिलबाट। भारत के पिठौरागढ़ में नेपाल भारत सीमा समन्वय समिति के बैठक ओराइल बा। बैठक में सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुने समस्या तथा साझा सरोकार के विषय आपसी संवाद समन्वय व स्थापित संयंत्र मार्फत समाधान करना तथा शांति सुरक्षा और सद्भाव कायम कर दुनू पक्ष से प्रतिबद्धता जनागिल बा। सीमा क्षेत्र में शांति सुरक्षा अपराध नियंत्रण विपद व्यवस्थापन व्यापार सहजीकरण तथा पूर्वाधार मरमत और निर्माण लगायत के विषय में छलफल हुईलक बैठक के प्रमुख जिला अधिकारी मीना आर्याल जानकारी दिलबाट। सीमा क्षेत्र में हुईना अवैध गतिविधि तस्करी लागू औषध ओसार पसार मानव बेचबिखन तथा अन्य सीमा अपराध नियंत्रण के लाग दुनू देश के सुरक्षा निकाय बीच नियमित सूचना आदान प्रदान करना सहमति हुईलक वहां जानकारी दिलबाट। सीमा आगमन हन सहज और प्रभावकारी बनैना विषय में दुनू देश के अधिकारी बीच छलफल हुई रह। बाढ़ी पहिरो तथा आकस्मिक बाढ़ी के जोखिम नेपाल भारत दुनू उहर नै बा। प्रमुख जिल्लाधिकारी अर्याल कल विपद व्यवस्थापन के लाग सूचना आदान प्रदान करना साझा संयंत्र निर्माण करना विषय में फिर छलफल बैठक में छलफल हुई बा। बैठक में नेपाल भारत बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध जन स्तर समर्थक सुदृढ़ करना सीमा समन्वय बैठक निरन्तरता देना विषय में सहमति हुईलक जानकारी देखिल बा। बैठक में नेपाल के ओर से प्रमुख जिल्लाधिकारी अर्याल के नेतृत्व में बैटडी और दार्चुला जिला के अधिकारी तथा सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधिकन के सहभागिता रह। भारत के ओर से पिठौरागढ़ जिला के अधिकारी तथा सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि सहभागी रहलक जनागिल बा। समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जैती जैती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। जानकी गांवपालिका में स्वास्थ्य कार्यक्रम के वार्षिक समीक्षा गोष्ठी ओराइल सेती अस्पताल पुगन से अपरभात सुस्त बनाई मुख्यमंत्री भट्ट देल निर्देशन। खानेपानी संस्थान धनगरी के बोकेदा 2,51,00,000 और रसुआबारी में मंगलवार दिन समय 1,058 सब भेटागिल 972 जना के लाश के मुचुलका। ली ताबकला थारू भाषा खोज खबर अथ 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सेगी अब खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद दी थी। मई गीता फे विदाटू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
12: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
13: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
12: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
13: कहाँ हुनु भाई, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि।
12: अब त म ढुक्क।
14: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
13: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टिकापुर कैलाली।
12: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्र्याक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
12: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
12: ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
15: हामी कहाँ सियट एपोलो ही रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
14: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 98 48 57 18 28
16: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: समयमै आफ्नो घर परिवारको जन्म मृत्यु विवाह र बसाई सराई जस्ता व्यक्तिगत घटना आफ्नो वाडा कार्यालयमा रहेका पञ्जीका अधिकारी समक्ष दर्ता गरी कानूनी मान्यता प्राप्त गरौं। यसले तपाईँ हामी सबैलाई कानूनी रूपमा काम गर्न वा गराउन सजिलो हुन्छ।
1: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वहाँ नन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनेना पट्टा नि पैना त
3: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाएका अन्सेकले कत्रा सुघर बनाएका अन्ला बाटी
3: ए ले ले ठिक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर प्रहरी सिंह सुनार।
2: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।

0: বাবু, এ বাবু, কাল মনীষ মেডিকেল মে যাইস তো?
1: মই নাই যাই, উহা আপন অনুহার বিগার কে ঘর সে বাহির নাই নিকরছু।
0: উহে মারে তো তুহিন উহা পাঠাই তো। ইহা হের ই পত্রিকা মে লিখাল বা মনীষ মেডিকেল মে আব ছালা সম্বন্ধী সমস্যা রহল বিরামী হুকরন বড়িয়া ডাক্তার হইছে উপচার হুই তাই তোর সমস্যা ফেন আসতে বা জৈবে তো সমাধান হুই যাই।
1: এ হো দাদু, অপন অনুহার বিগার কে পরিশান রহু, তব তো মই অব্বিহি যাইম।
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: हेलो बहनी, कता हो तिमीले था छ कि नै सीजी कंपनी को वाई वाई जिंक 15 रुपया में एक पेटी रूपान 60 में उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ। तिमीले कति में किन्यौ?
4: मैले त एक पेटी चाउचाउ रु 600 किने।
0: 600 रुपया किन हाल्नु पर्यो? 560 मा त ब्लक नम्बर 14 मा रहेको हरिलाल किराना पसलमा रु 15 वाला चाउचाउ पाइन्छ, त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ, र त्यस्तै रु 25 को क्लासिक चाउचाउ र 35 को चाउचाउ रु 2500 रुपियाँमा आउँदैछ नि, त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ। फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने? 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ, त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको, र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ। भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुस् है। होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ। आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल, साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
4: हरिलाल किराना पसल, ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टीकापुर कैलाली, संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट, सम्पर्क नम्बर 9848-40-22-41।
5: टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
4: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै इन्द्रेणी ज्वेलर्समा माइली तिलहरी, छटके तिलहरी, रामलीला झाला, पिजडा झुम्का, बाला, एक आनामा एक जोडी चूरा, बबी औठी, बेरुवा औठी, पेन्डल, एकदेखि चार आनासम्मका नौगेडी हारहरू, चन्द्रमा, मोटी चन्द्रमा र अर्डर अनुसार सुन चाँदीका गरगहना बिना रसायन बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ।
0: इन्द्रेणी ज्वेलर्स, बलभद्र चौक, टीकापुर, कैलाली। संचालक रणबहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9844-40-19।
6: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
7: जब देखनो तो हिन है।
6: यदि मन परत हुई कल से अपन मनन सुनना चाहती, कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के 2 कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के सुना, तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915-61-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीत में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।